जन्म जन्म टिकटिए सजन सचा भात श्री शाह देशा हो जिस भाष वैद्या सोया

लक्ष्मी वर्षन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा। हुकमी वर्षन लागे मेहा, साजन संत मिल नाम जपेहा।